0: वाह जी,
1: गजल तेरी मुझको सुनाने लगे, रोते रोते हम मुस्कुराने लगे। एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, एक लम्हे। शमी भाई जी सुनियो गल।
0: जी
2: जी
1: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाने लगे।
0: क्या बात है,
2: बहुत
1: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहना, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की। अगर रात से सानू सोने की फुर्सत कितनी है,
0: जी
1: रात में
2: जी
1: हम

0: क्या बात है।
1: रोते हम मुस्कुराने लगे।
0: मुबासी
1: अगे कहना जी ओ कल कल दी जिंदगी बारे पूछता भी कल नू की होएगा।
2: जी
1: कहना उनसे पूछा कल जिंदगी का पता,

होगा, रचना को अगर ठुकराओगे संसार भागे फिरते हो। हम कहते हैं जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास करो।

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: रे तू चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ ते अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे स्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, सुन तेरी हर जीत अच हार की परीत, चोरा मेरे हड्डा नु नित खावे, हाए वे मेरे।